0: Laika Gold. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ. हमारे राम.
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट.
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक Radio.
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
3: Four beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
1: Relax, I've booked the Uber already.
4: But how? My roaming isn't even working yet.
1: I switched to Simzy before we left London.
4: Simzy? Since when are you the tech expert?
1: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
1: T's and C's apply.
6: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
2: In Dubai
3: Ears are great aren't they One on each side of your head for stereo It's because of ears that radio ads can amplify your advertising 40 million adults listen to commercial radio every week That's 80 million ears Give or take See radio differently at radiocentre.org
4: 7 stations One podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
0: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने Leica Gold पर

0: This is Leica Gold. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
3: 25? Seriously?
2: Sounds like Ojo time.
3: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
2: Sorry about the wait. How can I help?
3: You can help me celebrate. I won.
4: Feel the fun. Play Ojo.
5: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
6: Taza kare apni yaadein. Like a gold ke saath.

एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कह ना कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै बे परवाह। साचा साहेब साच ना।

सुनिए हाथ वैसगा नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कहीं ना जाए जे को कहे पिछ

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत्सियों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: London, the wait is over.
3: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
2: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
3: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
2: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
3: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
2: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
4: Haldiram's.
5: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
6: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
5: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
7: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Gold Breakfast with Kajal.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
2: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
4: Kajal's Couture for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
5: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 the Broadway Southall. UB

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: काजल्स मॉर्निंग मंत्रा प्रेजेंटेड बाय मंत्रा हॉलीडेज, योर फ्रेंडली हॉलीडे पार्टनर फॉर यूके, यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस। फॉर योर मेमोरेबल हॉलीडेज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड बजट, कॉल 0203-773-633 टू बुक योर ड्रीम हॉलीडे।
1: लाइका गोल्ड
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हम

0: इससे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: काजल्स कटियर फॉर एवरी सेलिब्रेशन, एवरी मोमेंट एंड एवरी अनफॉरगेटेबल एंट्रेंस।
3: डिस्कवर काजल्स कटियर Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories and stylish outfits for men and women.
3: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Kajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
3: Visit kajalscouture.co.uk.
4: Chalo jaiye ek nava safar par.
5: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचीसन फॉल्स।
6: बस पैक करो अने रिलैक्स थाई जाओ।
5: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
6: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
5: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
7: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
8: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
7: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
8: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
7: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
8: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
7: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
8: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
10: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
11: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
10: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
12: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
13: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
14: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
12: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
13: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
15: Feel the fun. Play Ojo.
16: 18 plus, gamble aware.
17: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
18: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

जाना के हाँ हाँ और सुनो और सुनो हाँ। एक एक परी थी, क्या एक परी थी, तोता परी, हंसी वो बड़ी थी, हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका, क्या गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका, चले रात आगे, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो हाँ।

अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: जायका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office. On 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.

0: is cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
3: टीचर्स, ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबोथिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है. बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर £7,500. पेरेंट्स कैन आल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड LAIKA10. विजिट book.robothink.co.uk/LAIKA.
4: सो your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
5: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
6: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
4: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
5: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
7: Feel the fun. Play Ojo.
8: 18 plus, gamble aware.
9: SonarTours.co.uk. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonar Tours on 0208 951 0111.
10: LAIKA Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. The LAIKA Radio Network, the perfect soundtrack for a British summer heatwave. Gold Breakfast with Kajal.

0: जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गाके सुनाएंगे। किशोरदा आड़ी बर्मन और सपना चक्रवर्ती की आवाजों में ये गाना आपने सुना, और मैं भी यही कहूंगी कि जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन ये आने वाले 3 घंटे हम और आप मिलकर बिताएंगे, अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे और एक अच्छा समय बनाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस शो में, ये है लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, जहां पर एक बार फिर से ऋतु शर्मा हाजिर है रवि शर्मा जी के मनोरंजन प्रोग्राम में आप सबका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के पूरे 1 बजे तक। और ज़रा ये तो बताइए कि आप सब कैसे हैं, क्या हालचाल है। तो बिल्कुल इस प्रोग्राम में आपकी हालचाल भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और भाई आपके ढेरों मैसेजेस मिलते जा रहे हैं। ज्योति कहती है कि ऋतु, ये जो मेहता फैमिली है ना हमारी, इस लाइक सत्ते पे सत्ता फिल्म के जैसी है। हम सब बहुत ही क्रेजी हैं, बहुत ही नॉटी हैं, मिस्चीवियस हैं और हंसी मजाक के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ज्योति जी, यही तो है जीवन का असली मजा, और इसी को तो कहते हैं परिवार, वरना तो लोग अकेले ना रह लें। तो जब परिवार में ये हंसी खुशी मस्ती का माहौल होता है ना, तो जीने का मजा कुछ अलग ही हो जाता है। तो चलिए अब बातें करते रहेंगे, साथ देते रहेंगे, आप हमारा साथ देते रहिए, मैं आपको गाने सुनवाती रहूंगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 126.75 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर याद रखिए आपको करवाना होगा वाई SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है लाइका गोल्ड,
3: लाइका रेडियो।
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो आज बोस्निया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में मैच आज स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच में मैच है। दरअसल आज स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच में मैच होगा, लेकिन आपको बता दें कि आप अपना 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैक लॉ से, और ये सब आपको मिलेगा जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: At TUI, we give you more. More confidence you got the best deal thanks to the TUI Price Match Promise. More hotels designed around what you love, from swim-up suites to splash parks. And more ease with flights, transfers and hotels all in one place. Package holidays made simple. Book on app, in store or online. TUI. Atoll and APTA protected. T's and C's apply. Selected hotels only. See website for details.
5: Ye hai Laika Gold. 10:35 a.m.

0: यस जंगली फिल्म से था ये गाना मुकेश जी और आशा भोसले की आवाजों में शमी कपूर की सुपरहिट फिल्म। और जानते हैं इसमें सायरा बानू सिर्फ 17 साल की थी और आई थिंक ये सायरा बानू की डेब्यू फिल्म थी जिसमें उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आपको याद दिला दे एक बार फिर से कि आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहां पर ऋतु शर्मा हाजिर है आपका साथ देने के लिए सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं तो चलिए एक नज़र आपके मैसेजेस पर भी डाल ली जाए। जासू जी स्वागत है आपका इस शो में। हंसा जी धन्यवाद। नॉर्थ हॉल से प्रकाश सुथार जी है ना। नरेंद्र बागिया जी धन्यवाद। और आज भी आपने कुछ अर्ज किया है, लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि दोस्तों में बात होती रहे, ये भी जरूरी नहीं कि दोस्तों में मुलाकात होती रहे, जरूरी ये है कि दोस्त जहाँ भी रहे उन्हें हमारी याद होती रहे। चलिए बहुत अच्छा, आपके सारे दोस्तों के नाम पर जाती हैं ये चार लाइनें। और विनोद जी हमारे साथ हैं, अरुणा जी प्रोग्राम सुन रही हैं, गुड वाली मॉर्निंग भरत गंगाराम जी, हेतल सलंग की सहर, हमारी आंटी जी, आज तो आपका दिन बन गया। शुरू के दोनों गाने अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज थे जिन्हें आपने अपने हस्बैंड को जलाने के लिए लाउड म्यूजिक पर सुने, क्या बात है। थैंक यू आपके मैसेज के लिए और मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू मिसेस शेख तोची जी, अर्जुन जी एंड ऑफ कोर्स हमारे गिरीश जी भारत में प्रोग्राम सुन रहे हैं, हरीश खत्री जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं और शुरू करते हैं आज के प्रमुख समाचारों का सिलसिला।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर आ रही है बंगलुरु से। कर्नाटक में बंगलुरु के पास मादपट्टना गांव में एक पत्थर की खदान में बड़ी चट्टान गिरने से बिहार के 7 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। आज भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखी गई है। दिल्ली में सोने की कीमतों में बड़ा उछाल आया है, जहां 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,44,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ की पुलिस में AI ने कमाल मचा दिया है, वो ऐसे कि छत्तीसगढ़ पुलिस में पिछले 3 सालों से चल रहे फर्जी वेतन घोटाले को इंसानी निगरानी तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन एक AI बेस्ड ऑडिट सिस्टम ने इस गड़बड़ी को पकड़ लिया है। केरल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, वहां पर इडुक्की जिले के इलाइची पहाड़ी रिजर्व जो कार्डमम हिल रिजर्व है उनमें बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण को लेकर केरल उच्च न्यायालय ने खुद संज्ञान लेते हुए जनहित में एक याचिका शुरू की है। आज से आषाढ़ का महीना शुरू हुआ है, आषाढ़ का महीना चल रहा है और आज कोई बड़ा त्यौहार भारत में तो नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ का महीना भी पवित्र माना जाता है और इस महीने में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू की जाती है जो इस बार 16 जुलाई से शुरू हो रही है और उसकी पूरे देश में धूमधाम से तैयारियाँ शुरू हैं। PM नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर बुधवार को दिल्ली पहुंची जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची का स्वागत करते हुए दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। PM मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के संयुक्त प्रयास इंडो पैसिफिक क्षेत्र सहित दुनिया में शांति स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रधानमंत्री सनाई तकाइची, हमें आपके पहले भारत दौरे पर आपकी मेज़बानी करके बहुत खुशी हो रही है और मैं गुरुवार को हमारी बड़ी बातचीत का इंतज़ार कर रहा हूँ जो आज होने वाली है, जिससे भारत और जापान की स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप और गहरी होगी। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से भीषण हमला किया है। इस हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 34 यानी कि 34 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एक 9 मंजिला आवासीय इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उधर अमेरिका ने व्यापार घाटे का हवाला देते हुए मैक्सिको और कनाडा के साथ अपने त्रिपक्षीय व्यापार समझौते को सालाना समीक्षा ट्रैक पर डाल दिया है और उन्हें तुरंत रिन्यू करने से इनकार भी कर दिया है। और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने डीआर कांगो और बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर अंतिम 16 में एंट्री ले ली है। कल फीफा वर्ल्ड कप में खेले गए एक मैच में हैरी केन ने दो शानदार गोल की बदौलत इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में एंट्री करा दी है। कैप्टन हैरी केन ने दूसरे हाफ में 11 मिनट के भीतर दो गोल दाग कर इंग्लैंड की वर्ल्ड कप जीत की उम्मीदों को एक नई जान दे दी है। उनके दम पर इंग्लैंड ने कल रात अटलांटा में खेले गए राउंड ऑफ 32 मुकाबले में डीआर कांगो को 2-1 से हराकर शानदार वापसी की है और अब इंग्लैंड का सामना संडे को मैक्सिको सिटी के एजटेका स्टेडियम में होस्ट मैक्सिको से अंतिम 16 में होगा, यानी कि अगला मुकाबला इंग्लैंड का मैक्सिको से होगा और देखने वाली बात है कि इस मैच में इंग्लैंड क्या कमाल दिखाती है। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: क्या खूबसूरत धुन बनाई है जतिन ललित ने। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान और काजोल की सुपरहिट फिल्म। और इस गाने को सुनकर हरीश खत्री कहते हैं, ऋतु ये मेरा फेवरेट वाला गाना है। हां जी हरीश जी, बिल्कुल है, क्योंकि कुमार शानू आपके फेवरेट है तो गाना भी आपका फेवरेट ही होगा। चलिए आपके नाम करते हैं। एंड वंदना गुटका कहती है कि मुझे पार्लियामेंट में अवार्ड मिला है। क्या बात है वंदना जी, बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन ये अवार्ड किस लिए मिला है जरूर बताइए, लेकिन आपने कुछ जरूर अच्छा ही किया होगा। पार्लियामेंट में आपको बॉब ब्लैकमैन से अवार्ड मिला है तो बहुत बहुत बधाइयां, खुशी की बात है। और इसके अलावा क्रॉइडन से महेंद्र पटेल जी हमारे साथ हैं, शेखर आनंद जी ने भी अपनी अटेंडेंस लगा ली है, थैंक यू साथ देने के लिए। और हंसा जी है ना जी भी हमारे साथ हैं, तो बस साथ देते रहिए, ऐसे ऐसे गाने सुनवाती रहूंगी।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। ये है लाइका गोल्ड।
2: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: और अगर कहीं हॉलीडे पर जाने की सोच रहे हैं तो दुबई से कॉन्टेक्ट साउथ हॉल से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि उनके लिए दुबई के बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं। आपको उन्हें फ़ोन करना है ऑन 0208-574-8410 पर। ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
2: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: At TUI, we give you more. More confidence you got the best deal thanks to the TUI Price Match Promise. More hotels designed around what you love, from swim-up suites to splash parks. And more ease with flights, transfers and hotels all in one place. Package holidays made simple. Book on app, in-store or online. TUI. Atoll and APTA protected. T's and C's apply. Selected hotels only. See website for details.
4: Ye hai. Like a gold. Like a gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.

0: nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sierra South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
2: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
1: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
2: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
1: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
2: Visit Kajal's Couture.
3: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. अपनी फैमिली को सिक्योर करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444.
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
5: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
4: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
7: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
8: 25? Seriously?
7: Sounds like Ojo time.
8: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
7: Sorry about the wait. How can I help?
8: You can help me celebrate. I won.
9: Feel the fun. Play Ojo.
10: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGoon.com.
12: हाय, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर. इन द इवनिंग शो विद अश्विनी, फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: इस गाने को जब मैं सुन रही थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आवाज महेंद्र कपूर की है या ये आवाज रफी साहब की है। इतनी मिलती जुलती आवाजें लग रही थी दोनों की, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाया है ये गाना महेंद्र कपूर ने, और उन्हें इस फिल्म में गीत गाने के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला है। और ये B.R. चोपड़ा की एक ऐसी फिल्म थी जिसने अवार्ड जीता था, और ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी जिसमें एक बहुत अच्छा मैसेज भी था, क्योंकि पुराने ज़माने में ज़्यादातर जो फिल्में बना करती थी उनमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता था। और ये फिल्म इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि बाद में इस कहानी पर और भी बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन जो कमाल इस फिल्म ने दिखाया वैसा तो शायद कोई और फिल्म नहीं कर पाई। गाना आप सबको पसंद आया, थैंक यू, साथ देते रहिए। एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस शो में ऋतु शर्मा आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। गुड मॉर्निंग,
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 127.26 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 98.16 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: Like a goat.
5: Jai Shri Swaminarayan. Save the date. Sunday 19 July 2026 annual Rath Yatra ke liye bhakton ko milega pavitra avsar. Bhagwan Shri Jagannath ji ke rath ko Harrow aur Brent ki streets par khinchne ka. Yatra shuru hogi SKSS Temple Canton Harrow se aur purna hogi Shri Swaminarayan Temple Stanmore par. Zyada jankari ke liye dono temples ke social media aur websites skssd.org aur stanmoretemple.com visit kare. Exclusive radio partners Leica Radio. Jai Shri Swaminarayan.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410, दैट्स 8574 8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
9: London, the wait is over.
10: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
9: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
10: From Raj Kachori to Chole Bature, Pao Bhaji,
9: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
10: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
9: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
11: Haldiram's. Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Great news, Tariq Halal Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Rainers Lane, 287 Rainers Lane, Pinner, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Rainers Lane.
14: SonaTours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208 951 0111.
15: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
16: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
17: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
15: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
16: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
18: Feel the fun. PlayOjo.
19: 18 plus gamble aware.
20: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a radio और like a gold. आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@likeradio.com.
21: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold.

0: कमाल का म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और उस पर अलीशा चिनाई और किशोरदा की आवाज। एक बहुत ही पॉपुलर गाना जिसे कुछ यानी कि लास्ट वीक हमारी एक लिसनर सुनना चाहती थी, तो सोचा क्यों ना आज इस गाने को प्रोग्राम में बजाया जाए। और आई एम श्योर जो सुनना चाहती थी उन्होंने इस गीत को इंजॉय किया होगा। मैं उनका नाम जरा भूल गई हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. Sir Keir Starmer will say sorry this morning over decades of forced adoptions in England and Wales. Around 185,000 children were taken from their unmarried mothers in the 1950s, 60s and 70s. A report 4 years ago found government then bore ultimate responsibility for causing pain and suffering. Campaigner Karen Constantine says it's long overdue.
3: The reason it's vital is the ageing profile of the people that were impacted. And this wasn't 185,000 people. This is more like 500,000 people that were impacted by this heinous practice.
2: There have already been apologies from Welsh and Scottish ministers. A teenager has been arrested on suspicion of attempted murder after a 16-year-old boy was left with critical injuries following a shooting in Birmingham. Yesterday's incident in the Alum Rock area is not thought to be connected to a nearby mosque. 17 civilians are reported dead after Russian drone and missile attacks on Kyiv overnight. The country's foreign ministers called it a night of horror. The cost of diesels dropped by its highest amount in a single month since 2000, but the RAC's warning oil prices still remain higher than before the Iran war. School can wait is the message from England's head coach to the nation's youngsters as he urged them to stay up for Monday's overnight World Cup match with Mexico. They're into the last 16 after Harry Kane scored both goals in the 2-1 win over DR Congo. Dave Bricknell, who's the England captain's former youth coach, admits things could have been very different.
4: He volunteered to go in goal. He done very well in goal. And I thought, great, we've got a goalkeeper. And then one of his friends' mothers come up to me and went, Dave, he's not a goalkeeper. He plays on pitch, and he went on pitch. And the rest, as I say, is history.
2: And Tottenham have confirmed the signing of West Ham midfielder Mateus Fernandes. His £85 million transfer fee could be eclipsed later by Newcastle's Sandro Tonali, who's having a medical. From Sky News, I'm Cam Hall.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
5: The future is unpredictable at times, but the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated tutors every step of the way. Now, suddenly your possibilities are open. Search the Open University to find out more. The Open University, the future is open.
1: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: चलिए बात हो जाए मौसम की, और मौसम ड्राई रहने वाला है। आफ्टरनून में खूब अच्छी धूप भी देखने को मिलने वाली है। मैक्सिमम टेम्परेचर लंदन में आज 26 डिग्रीज को टच करेगा और मिडलैंड्स में मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्रीज के आसपास ही रहेगा।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
6: Like a gold.
7: Manoranjan with Ravi Sharma.
6: Like a gold. Chintan.
0: जी हाँ, आज थर्सडे का दिन है। 2 जुलाई हो गई है, 11:03 हुए हैं और ये समय है चिंतन का। चिंतन यानी कि आज का विचार। और आज के चिंतन में भी हमेशा की तरह एक ऐसी कहानी जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज छुपा हुआ है। आज की कहानी है अमित की, जो एक बहुत ही बड़ा और कामयाब बिजनेसमैन था। उसके पास आलीशान बंगला, गाड़ियां और बहुत सारा पैसा था। जब तक अमित के पास पैसा था ना, उसके दोस्तों की कोई कमी नहीं थी। हर शाम उसके घर पार्टी होती और लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं तकते थे। अमित को लगता था कि ये सब उसके सच्चे दोस्त, सच्चे शुभचिंतक हैं और वो उन्हें खुश करने के लिए खूब पार्टी देता, खूब खर्चा करता। लेकिन वक्त का पहिया घूमा। एक बहुत बड़े बिजनेस घाटे और धोखे के कारण अमित की जो कंपनी थी वो दिवालिया हो गई। उसका बंगला, गाड़ियां सब बिक गए और फिर वो एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगा, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले तो वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता था। और जैसे ही अमित के बुरे दिन शुरू हुए, उसके जो दोस्त थे, या कहूँ तथा कथित दोस्त थे, जो जिगरी दोस्त थे, उन्होंने रंग बदलना शुरू कर दिया। जो दोस्त रोज फोन करते थे, उन्होंने अमित का नंबर ही ब्लॉक कर दिया और रास्ते में मिलने पर लोग नजर चुरा कर निकलने लगे। उन्हें लगने लगा कि कहीं ये हमसे कुछ मांग ना ले। जब अमित को सचमुच मदद की जरूरत थी, तब सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लिया। अमित पूरी तरह से टूट चुका था, अकेले ही बैठकर कमरे में रो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला, देखा सामने पुराना स्कूल का दोस्त राघव खड़ा था। राघव एक बहुत ही साधारण नौकरी करता था और अमित की रईसी के दिनों में उसकी चमचमाती पार्टियों में भी नहीं आता जाता था, क्योंकि वो अपने साधारण नौकरी, साधारण जीवन से बहुत खुश था। लेकिन जब उसे अमित के बारे में बात पता चली तो उससे रहा नहीं गया। वो तुरंत उससे मिलने आया और उसने कहा, भाई कोई मदद हो मुझे बताना, जैसा भी होगा मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता हूं। अमित बस राघव को देखता ही रह गया। राघव ने अमित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई वक्त तो बुरा है लेकिन तू नहीं, तेरे पास पैसा नहीं तो क्या हुआ, तेरे पास वो हुनर और दिमाग आज भी है जिससे तूने वो मुकाम पाया था। चलो उठो, जीरो से शुरुआत करो, मैं तेरे साथ हूं, हिम्मत क्यों हारता है। राघव के इस भरोसे ने अमित के अंदर फिर से हिम्मत भर दी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा काम शुरू किया और अमित ने अपनी मेहनत और राघव के साथ कुछ ही सालों में अपना खोया हुआ मुकाम फिर से हासिल कर लिया। और अब अमित के पास फिर से पैसा था और वही मतलबी दोस्त दोबारा उसके पास आने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस बार अमित समझदार हो चुका था। उसने मुस्कुराकर ही उन्हें दूर से अलविदा कह दिया। छोटी सी कहानी लेकिन सीख बहुत बड़ी है। जब आपके पास सुख और पैसा होता है ना, तो पूरी दुनिया आपकी दोस्त बन जाती है। लेकिन दुख और संकट ही वो थर्मामीटर है जो ये नापते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। इसलिए बुरे वक्त से घबराए नहीं, क्योंकि बुरा वक्त आपकी जिंदगी के फालतू और मतलबी लोगों को आपकी जिंदगी से साफ करने का काम करता है।

0: राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को कितने सालों पहले यानी कि 1970 में लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने इस धुन को बनाया था, जिसे आज हमने चिंतन के साथ जोड़कर सुनवाया कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, और यही मैसेज था आज के चिंतन का। ये केवल एक मशहूर भजन या गाने की लाइन नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच है। महान कवियों, दार्शनिकों, दार्शनिक जो हैं, सभी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि इंसान की असली परख उसके बुरे वक्त में ही होती है। जब हमारे जीवन में सफलता, पैसा और खुशियां होती हैं, तो हमारा जीवन रोशनी से भरा होता है। जैसे रोशनी में परछाई हमारे साथ चलती है ना, वैसे ही सुख के दिनों में दोस्तों, रिश्तेदारों और तारीफ करने वालों का मेला लगा रहता है। लोग हमारे करीब आना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे सुख का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा होता है, जिस तरह से परछाई रात के अंधेरे में साथ छोड़ देती है, ठीक उसी तरह जब जीवन में संकट, असफलता या आर्थिक तंगी आती है, तो वही सुख के साथी धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। लोग बहाने बनाने लगते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हें उनकी मदद ना करनी पड़ जाए। ये सारी बातें शुरुआत में बहुत तकलीफ देती हैं, लेकिन अगर इन्हें एक पॉजिटिव नजरिए से देखा जाए तो दुख दरअसल एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये आपके जीवन से कचरा यानी कि मतलबी लोगों को साफ कर देता है, और ये आपको पहचान कराता है कि कौन सच में आपका अपना है और कौन सिर्फ मुखौटा पहने हुए है। इसलिए आज की कहानी से छोटी सी सीख है कि जब बुरा वक्त आए और लोग साथ छोड़ दे तो निराश मत होइए, उस वक्त को एक अवसर मानिए और ये जानने का अवसर मानिए कि दुनिया में आपकी असली ताकत कौन है। अक्सर दुख के उस अंधेरे में जो एक या दो लोग आपके साथ खड़े रह जाते हैं ना, वही आपकी जिंदगी के, आपके जीवन के असली रत्न होते हैं, और उन्हीं का सम्मान कीजिए, उन्हीं का ख्याल रखिए, क्योंकि वही होते हैं आपके अच्छे और सच्चे दोस्त। आज की कहानी से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। भावना जी का भी कहना है कि बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू रिकिन जी, आप भी हमें सुन रहे हैं। हंसा जी, गिरीश जी कहते हैं कि यस, सच्चाई भरा गाना है और लोग अगर ईश्वर से प्रेम कर लें तो अंत में उन्हें रोना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। शेखर जी, उल्लास जी, महेंद्र पटेल जी, फरीदा जी, जासू जी, अर्जुन, फतेह पटेल, दिव्या जी हैरो से, जगदीश जी बुशी से, रोहित जी, मृदु जी, हिमा जी, सभी के मैसेजेस मिले हैं, सभी को चिंतन बहुत अच्छा लगा है। सो थैंक यू साथ देने के लिए। हमेशा ही आप चिंतन 11 बजे की खबरों के बाद सुनते हैं रवि शर्मा जी के साथ, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मैं उनकी जगह इस शो में आपका साथ दे रही हूँ, लेकिन मंडे से रवि शर्मा जी फिर से हाजिर हो जाएंगे। चलिए लौट जाते हैं अपने गीतों की ओर, सुनवाते हैं आपको अगला गीत।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज ये 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 126.75 भारतीय रुपए, और याद रखिए कि ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच में मैच होगा, लेकिन आपको याद दिला दें कि 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारी स्पॉन्सर्स रैकलॉ से, और ये सब आपको मिल जाएगा जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: ये है लाइका गोल्ड।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना, वन ऑफ माय फेवरेट, बॉम्बे का बाबू, जिसमें देवानंद थे और साथ में थी साथ में कौन थी, सुचित्रा सेन। और ये गाना आप सबको अच्छा लगा है, सो थैंक यू साथ देने के लिए। और आपके ढेरों मैसेजेस भी पहुंचे हैं जिसमें चिंतन से रिलेटेड बात लिखी हुई है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: So thank you saath dene ke liye. And Rikin ji, aapne bilkul sahi kaha hai ki chintan mein aapne jis tarah ke logo ke bare mein baat ki thi, aise dost market mein easily available hain aur aap unhe per kilogram ke bhav se bhi khareed sakte hain. Bilkul sahi kaha aapne. थैंक यू जासू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी थैंक यू। परविंदर मथारू कहती हैं कि तेरा साथ है कितना प्यारा, मेरी फ्रेंड के नाम पर कीजिए। बिल्कुल, हमने उनको दिया। निर्मला जी थैंक यू। जासमीन थैंक यू। शोभना राय बहुत बहुत धन्यवाद। नलिनी शाह जी थैंक यू। भावना जी, SS भोगल एंड हमारे जितने भी साथी हैं सभी का धन्यवाद। गीतों को आप पसंद कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और हाँ, याद दिला दूँ, प्रोग्राम के अगले हिस्से में एक इंटरव्यू भी होने वाला है। हमारे यहाँ स्टूडियो में कोई आने वाले हैं जिनके बारे में जिनसे मैं बात करूंगी, और वो कौन है और किन के बारे में बात होगी ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर में। लेकिन फिलहाल ये बता दे,
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: तो भाई, लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड आ चुका है और इस बार का जो एपिसोड है उसका टाइटल है ट्रेडिशंस एंड टाबूज। और इसे होस्ट किया है रेडियो वाली ने, जो कि लाइका रेडियो की इवनिंग शो प्रेजेंटर है। 7 से 10 बढ़िया गाने बजाती हैं, जरूर उन्हें सुनिए। और आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजोन पर, एप्पल पर और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं पर भी जाकर आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
6: Latuke halone nandala.
5: Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: London, the wait is over.
10: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
9: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
10: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
9: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
10: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
9: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
11: Haldiram's.
12: Great news, Tariq Halal Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Rainers Lane, 287 Rainers Lane, Pinner, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Rainers Lane. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
11: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
13: 4 beers, please, garçon!
11: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Making summer feel better. This is Leica Gold.

0: लता जी की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना रोहित को बहुत पसंद है। कहते हैं इसके वर्ड्स बहुत सुंदर है। चलिए रोहित, ये गाना मैंने आपको डेडिकेट किया, इसके साथ नलिनी शाह संतोष जी आपके बिना पर जाता है।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: और ये अगला गीत हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। मिलेंगे आपसे न्यूज के उस पार, और न्यूज के उस पार गीत भी सुनवाएंगे और एक इंटरव्यू भी होगा। बात करेंगे अमूल्य वासा से, जो है फाउंडर ऑफ TW पेज। किस बारे में बातें होंगी सब बताऊंगी। पहले इस गीत को सुनिए, मिलेंगे आपसे न्यूज के उस पार।

0: लीजिए, ये थी लता जी की आवाज। अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म मेरा साया से लिया था मैंने ये गाना, और उससे पहले लता जी और यशुदास की आवाजों में त्रिशूल फिल्म का गाना जो हम सभी का फेवरेट गाना है। तो बस आप सबने इसे सुना एंड थैंक यू साथ देने के लिए। ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर, जहां पर एक बार फिर से ऋतु शर्मा आपके साथ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में होने वाला है एक इंटरव्यू, और जिनसे हम बात करने वाले हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनके बारे में बताती चलूं कि आज हमारे साथ है अमूल्या वासा, द फाउंडर ऑफ टी डब्ल्यू पेज। तो सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अमूल्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइका रेडियो नेटवर्क पर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो हम आपसे बस यही जानना चाहते हैं कि आपने अपने लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ शुरू की है। आपने यूके, इंडिया, यूरोप, मॉरिशस और अफ्रीका में कई सारे फाइनेंशियल बिजनेसेस खड़े किए हैं, और अब आप एक नए वेंचर जिसका नाम है टी डब्ल्यू पेज के साथ ब्रिटिश बिजनेसेस में भी कुछ कमाल की चीज़ें लेकर आए हैं। हम जानते हैं जैसे कार्ड पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, इंस्टेंट पेमेंट लिंक, ये एक कम्प्लीट बिजनेस बैंक अकाउंट है। तो कैसे आपको आइडिया आया, आपने कैसे सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए?
1: ये आइडिया 20 साल पहले आया और 20 साल से ये करते आ रहे हैं, एंड दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग टू गो इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स एवरीथिंग। आप आज कुछ भी देखे तो आप सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वो पेमेंट कौन प्रोसेस करेगा? ये पेमेंट प्रोसेस करेगा टी डब्ल्यू पेस।
0: Okay.
2: You can say in English. You can answer in English as well, Amulya bhai.
0: हाँ, आप जिसे भी भाषा में comfortable हो आप बोल सकते हैं।
1: I'm comfortable in all languages.
0: Oh, so, that's good.
1: Yeah.
0: तो मैं यही जानना चाहती थी कि मतलब आपने ये सब कुछ शुरू किया है तो हाँ कहिए।
1: नहीं, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे।
0: अच्छा हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि ये जो टी डब्ल्यू पेज है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो ब्रिटिश बिजनेसमैन के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकती है?
1: हाँ जी, कम्प्लीटली इट विल बी अ गेम चेंजर इन द ब्रिटिश मार्केट। फॉर द सिंपल रीजन इज वी आर स्केलेबल एंड वी नो आवर कस्टमर्स वेरी वेल एंड we know our customers very well, and they will be able to save a lot of money apart from going to other players who are in the market but they have a lot of hidden fees. Whereas in terms of TW Pays, we are very open and transparent in what we are charging, and we want to help the Indian community as well as the UK community, where small businesses have a lot of trouble getting POS machines, bank accounts, and transfer of money from their account to another people, their vendors, their clients. But here it's going to be a one-stop shop where people are able to receive money in their bank account swiftly and able to transfer bank account swiftly. So the headache of managing the money from their clients to their account, to their vendors, it all becomes a one-stop shop.
0: तो ये तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो कार्ड पेमेंट्स है, ऑनलाइन पेमेंट्स और बैंकिंग, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना क्या आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, और इसके पीछे क्या मुख्य वजह थी? यानी कि इस बिजनेस को शुरू जो आपने किया है, किसी खास प्रॉब्लम को देख कर आपने ऐसा कुछ शुरू किया है?
1: हमने व्हाट वी आइडेंटिफाइड इन द मार्केट इज दैट देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेयर हु इज डूइंग ऑल द सर्विसेज ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। सो आई हैव सीन माय फ्रेंड्स एंड माय क्लाइंट्स गो टू मल्टीपल वेंडर्स एंड देन द कोऑर्डिनेशन बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम व्हाट वी ट्राई टू रिजॉल्व फॉर देम इज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म दे गेट एवरीथिंग। So yes, there was a problem in the market. There is still a problem in the market that one, you can get banking from X, you get acquiring from Y, and you get ancillary services from Z, but at the same time you have everything on one single platform, and that makes it so convenient for the client, and this is the problem we want to try and solve.
0: तो ये जो सेक्टर है इसमें तो बदलाव बहुत तेजी से होते रहते हैं, और आपने ये शुरू किया है, तो आप 5 सालों में TW पेस को कहाँ देखते हैं?
1: 5 साल में मैं TW पेस को अपनी खुद की बैंक बनाते हुए देखता हूँ. Where people can actually put in their money on interest and also have the use of our skills in terms of treasury management and FX management, where people can save a lot of money and they are happy. So eventually we are servicing clients across the world, but let's start from here.
0: तो आप यहाँ तो शुरू किया है, लेकिन अगर आप इंडिया में, यूरोप में या किसी और जगह काम करते तो कुछ फर्क नजर आता है आपको दोनों जगह में, कहीं और यूके के बाहर?
1: यूके के बाहर इंडिया इज अ वेरी वेरी रेगुलेटेड मार्केट कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बट यूके, यूरोप, अफ्रीका, दे आर स्टिल इन अ I believe so that they are still in the baggage where we need to bring them forward in terms of regulations, but at the same time we can help them with our experience, with our knowledge and with our client service approach.
0: तो अगर हमारे listeners इस बारे में और जानना चाहते हैं या इसको use करना चाहते हैं तो आप उनके उनसे क्या कहेंगे?
1: Visit TW Pace, join us, we will help you and we will handheld you to become a better business person.
0: ओके और हमारे साथ कमल जी भी हैं, वो भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं. कमल जी,
2: गुड आफ्टरनून. अमूल्या अमूल्या भाई, यू नो यू स्टार्टेड दिस जर्नी अबाउट 20 इयर्स अगो एंड यू नो यू गॉन स्टेप बाय स्टेप एंड फॉरवर्ड एंड मैसिव एंड यू जस्ट टच्ड ऑन समथिंग दैट यू विल बी ओपनिंग योर ओन यू नो बैंक व्हिच इज एन अमेजिंग थिंग एंड इट्स नॉट यू नो इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ इजी थिंग टू डू सो सो व्हाट इज कैन यू टच अ लिटिल बिट मोर एंड ऑब्वियसली यू विल डू अ लॉट मोर इन स्पोर्ट्स you know and you obviously sponsors this TW20 Women's World Cup. I mean, why did you sponsor and what did you think about it, and you want to do in the sport industry, hospitality industry? I mean, give me a little short answer on that.
1: So TW Pace has been always socially very active in terms of managing the society and having a good background on the society. Now, sports is the only one thing that unites people. And TW Pace has sponsored multiple things within the sports arena. And I think sports is the only one thing where there is no religion, there is no caste, there is no creed. But it brings every single person together. And as TW Pace, we want to look at universities, we want to look at football stadiums, football teams, and help them and have embedded finance mechanism into them so that a sports culture is created within the company which is already existing, but at the same time you will be able to get more value out of, let's say you are having a card with Manchester, example Manchester United on it, or Chelsea on it, or Arsenal on it, or any other football team, and you will get benefits out of that when we launch our card in Q4.
2: That's wonderful. So Umulya, just quickly, you know, to get in touch with you and your company, so is it right, sales@twpays.com, and the phone number is 02 0312998840, or twpays.com. These are the way to get in touch with people. So I'm sure, you know, today's in today's world we need, and it's all gone digital, and you're ahead of your game and you're bringing new things all the time, and this university what you just touched on, and for all the students, it's a fantastic thing you're doing, and all the best for the future. And I pass it over to Ritu.
0: तो बस मैं तो ये कहूँगी कि थैंक यू सो मच अमूल्य वासा जी हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए. थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके.
2: बट प्लीज keep on listening.
1: Thank you so much, and I urge the entire UK community to come join us, and we will try and help you solve multiple problems and save money and happy future.
2: And our listeners, don't forget, keep on listening. TW Pays have sponsored our Kamal Prabhakar 2020 T20 for the women's cricket, which is going on. Today is the one semi-final, England playing South Africa, and the final is on the 5th of July. Everybody's excited, and thank you so much for supporting and sponsoring this, Mr. Amulya Vasa.
1: Thank you.
0: Thank
1: Most
0: you.
1: Most welcome.
0: थैंक यू अमूल्य जी, एंड थैंक यू कमल जी. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए.
1: थैंक यू रितु जी. थैंक यू.
0: बाय बाय.
2: थैंक यू. बाय बाय. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज वन पाउंड आपको देगा 126.75 भारतीय रुपए. और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाई एस बी आई ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो एस बी आई यूके मोबाइल ऐप. State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Ye hai. Like a gold. Like a gold.

0: शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में था ये गाना। और आप सब जानते हैं कि शमशाद बेगम ही हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और कुछ साथी कह रहे हैं कि अच्छा लगा बातें सुनकर अमूल्या वासा जी से। उनको बता दूं कि वो फाउंडर है TWPAZ के, जिसे लिखा जाता है TWPAYZ, उसका स्पेलिंग है TWPAYZ। अगर आप इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, TWPAYZ।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: रफी साहब की आवाज में काजल फिल्म से था ये गाना। Feel good track
1: brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: आपको याद दिला दें कि कल 11:30 बजे लेजेंडरी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हरिहरन लाइव होंगे लाइका रेडियो हेडक्वार्टर से, और अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन टैग कर सकते हैं हरिहरन ऑन लाइका रेडियो पर। तो कल ज़रूर प्रोग्राम सुनिएगा, कल हरिहरन लाइव होंगे लाइका रेडियो हेडक्वार्टर्स पर।
2: Like our gold.
3: The hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Women's Cricket Update, presented by Carmel Probaca, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
1: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
2: तो लीजिए एक बार फिर से कमल प्रभाकर जी हमारे साथ है। और कमल जी, आज क्या क्रिकेट अपडेट्स आप हमारे लिए लेकर आए हैं?
3: रितु जी, गुड आफ्टरनून पहले तो आपको। और यस, सो आज है सेमीफाइनल। टुडे इज अ वेरी बिग गेम। वी गॉट सेमीफाइनल ऑन टुडे एंड इट इज बिटवीन द माइटी इंग्लैंड। इंग्लैंड द होम टीम ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा एडवांटेज भी उनको। सो वी साउथ अफ्रीका के साथ, तो साउथ अफ्रीका इज अ वेरी सॉलिड साइड। अगर उसका कैप्टन खड़ी होगी और बैटिंग करेगी तो वो बड़ा कमाल कर सकती है, बिकॉज ही इज़ द डेंजर वुमन इन साउथ अफ्रीका। एंड देन वी गॉट द बॉलिंग अटैक इन इंग्लैंड, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बैटिंग इज स्ट्रॉन्ग, फील्डिंग इज वेरी गुड। सो बोथ ऑफ देम, यू गॉट हैव अ इलेक्ट्रीफाई सेमी फाइनल एंड समथिंग टू प्ले फॉर अ बिग बिग प्राइज टू गेट इन टू द फाइनल। और ये जो भी इनसे जीतेगा तो ऑब्वियसली फाइनल में आ गया। एंड फाइनल के लिए इट्स अ बिग बिग बिग आइटम, यू नो, कि ये अभी देखो कि सेमी फाइनल्स तो हो गया, देन वी गॉट द फाइनल्स विच इज़ कमिंग ऑन संडे द 5th of July। तो एवरीथिंग टू प्ले फॉर इट टुडे, यू नो, इट्स गोइंग टू बी मैसिव मैसिव। एंड द क्राउड, आई थैंक द क्राउड हु सपोर्टेड देम एंड बीइंग देयर इन बिग नंबर्स, यू नो, लाइक वी हैड इंडिया प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया, 27,000 पीपल, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉर वुमेन T20। So to our listeners, you know, keep on listening. We'll give you all the updates today, tomorrow, and then on Saturday, and then on the big one on Sunday. Rituji, you know, it's amazing, and thank you to you and all the people who were involved with Leica Radio, with the audio support.
2: Thank you, Kamalji. Thank you.
3: Thank you.
0: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
1: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: तो आपको याद दिला दें कि अगर आप हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल के पास दुबई की बहुत ही अच्छी डील्स है। आप उन्हें फ़ोन कीजिए 02085748410 पर और दुबई घूमकर आइए। सभी कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: TravelHubWorld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub. Best service with unbeatable.

0: This is Ballybrambat on Like a Gold.
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू।

हमने दो गाने आपको सुनाए, रिमेम्बरिंग मोहम्मद अजीज ऑन हिज 72nd बर्थ एनिवर्सरी, कर्मा फिल्म का, जी आई थिंक दिलीप कुमार साहब के ऊपर इनकी आवाज़ थी और अनिल कपूर के ऊपर इनकी आवाज़ थी फिल्म राम लखन में। अब आगे जाते हुए हम ज़रूर और बातें करेंगे मोहम्मद अजीज जी के लिए, लेकिन अगला गाना सुनिएगा, आई हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू, सुनिए।

0: London's biggest classics all day. This is Like a Gold.
1: मोहम्मद अजीज जी को याद कर रहे हैं. पिछला गाना जो आपने सुना था वो चालबाज, जिसमें श्रीदेवी थी. That song was on Sunny Deol.

0: ओपी नैयर का संगीत और एस एच बिहारी की लिरिक्स, फिल्म नसीहत 1967।
1: बाली ब्रह्मभट्ट ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स।
0: मेरा फेवरेट यादों की बारात का गाना जो है जीनत अमान, एंड आई जस्ट वॉज करेक्टेड बाई ए बी एच। जो मैंने कहा था ना खुद गर्ज का जो गाना था उसमें मोहम्मद हजीज हैड संग फॉर जितेंद्र एंड नॉट फॉर शत्रुघ्न सिन्हा। थैंक यू।

एंड दैट वाज खुदा गवाह में ऑफ कोर्स हमारे अमिताभ बच्चन, एंड आखिरी रास्ता उसमें भी अमिताभ बच्चन जी, डेविड डिकोस्टा एंड इंस्पेक्टर विजय शंडलिया एंड जेम्स डिकोस्टा, ड्यूअल रोल में उन्होंने जो निभाया था। और यहाँ पे हम मोहम्मद अजीज जी की आवाज़ सुना रहे थे पिछले दो गानों में, जहाँ पे वी आर रिमेम्बरिंग हिम फॉर हिज 72nd बर्थ एनिवर्सरी। सो इन द थर्ड आवर क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं ये आवाज़ सुनाता हूँ और उसके बाद उनके बारे में कुछ कहता हूँ।

0: कितना प्यारा गाना है फिल्म हम का। एंड मेरा जब भी स्टेज शो होता है वहां पे लास्ट गाना 90% ऑफ टाइम्स मैं ये गाता हूं। अब सैंडी शाह इज हियर, एंजॉय हिज कंपनी।
1: Bali Brumbat on Gold Afternoons. Like a
0: gold. हम तो जाते अपने गांव हरिहरन जी को मिलने जा रहा हूं। कल तक के लिए इजाजत। एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स इज गोना बी राज बदन।

0: is for everyone, even people who know nothing about investing. Like Keith, who thought dividends were a boy band. Jessica, who thought compound interest was a prison dating app. And Sue thought FTSE 100 was a bit of under-the-table fun, which surprised her accountant.
1: Oh, no.
0: If we can make investing feel good for them, it's no wonder which have recommended us 8 years running. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
2: Like our gold.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 0 3963 5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Are we there yet?
1: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
1: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simzy before we left London.
1: Simzy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
10: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
11: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
12: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। आज ही एक्शन ले 02089072444।
13: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 02087672142.
14: This is Sandy Shah on Gold Drive.
15: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: Eviction? Tenant dispute, property का मसला, Kenton Solicitors London landlords और tenants के लिए fast action लेते हैं और residential और commercial conveyancing plus commercial leases handle करते हैं. अभी call करें 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो. डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज. कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
3: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
4: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
5: 25? Seriously?
4: Sounds like Ojo time.
5: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
4: Sorry about the wait. How can I help?
5: You can help me celebrate. I won.
6: Feel the fun. Play Ojo.
7: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
9: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
10: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Tino Better Ghee. SonaTours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call SonaTours on 0208 951 0111.
1: This Saturday, Lotto is making a guaranteed 10 millionaires. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millionaires guaranteed to be made this Saturday. New Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules apply. 18 plus.
2: Next, Ashwini, in for Anisa Nasir on The Evening Show on Like a Gold.
3: हाय, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
4: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। व्हाट अ स्टार्ट, राइट? आशिकी फिल्म का गाना प्ले कर दिया तो 90s वाले बच्चे ऐसे ही खुश हो गए, उसके बाद में 80s वाले बच्चों को खुश कर दिया सुरेश वाडकर एंड अनुराधा पौडवाल की आवाज में। ओ हो हो हो, ये गीत ना मुझे इतना पसंद है, फुल वॉल्यूम चल रहा था स्टूडियो में, मुझे डर लग रहा था कि मेरी पड़ोसन आके ना बोल दे कि भाई हम भी यहाँ पे शो कर रहे हैं, आप अकेले थोड़ी हो जो अपना शो लगा के बैठे हो। ओके जी, पूछे आप सब से कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना, होंगे बिल्कुल। थर्सडे इवनिंग तक पहुंच चुके हैं आप और हम, और ये जो पूरा सप्ताह हम लोग अपनी हिम्मत जुटा के, अपना स्टैमिना लगा के, खुश होके, रो के, न्यूट्रल रह गए, जैसे भी हमने पूरा सप्ताह निकाला है भाई, निकाला है तो कंग्रेचुलेशंस। देखो थर्सडे तक आ गए, मतलब कल फ्राइडे यानी वीकेंड तो शुरू हो गया, तो नियरली एक छोटू से वीकेंड, इसको हम छोटा वीकेंड बोला करेंगे फिर, ठीक है, थर्सडे प्री वीकेंड है ना, प्री वेडिंग होता है वैसे प्री वीकेंड। तो आज थ्रिलिंग थर्सडे में आपके लिए मैं क्या लेके आई हूँ, भाई बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। हमेशा की तरह अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, आप सब अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं, और मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि आज आपने क्या इंटरेस्टिंग किया। तो कई लोग कह रहे हैं कि अरे नहीं भाई, बस सेम रोज़ का वही, नया नया नया, ऐसे नहीं होता जी, रोज़ होता है नया दिन। तो कुछ नए से आप और कुछ नए से हम, और नएपन हम अपनी ज़िंदगी के हर पल में लेके आते हैं, क्योंकि जो क्षण अभी, ये जो क्षण आप और मैं इस टाइम पे जो बात कर रहे हैं, ये वापस नहीं आने वाला ना, ये पास्ट होने वाला है, अगले क्षण है ना, थोड़ा ज़्यादा गहरा हो रहा है, अभी ज्ञान वाला टाइम नहीं है। ओके, तो कुछ रैंडम सा सवाल मैं आप सबसे आज पूछने वाली हूँ, हमेशा की तरह ऐसे थोड़ी होगा ना कि आप शांति से बैठ के बस अश्विनी की गपशप सुनेंगे, कुछ तो काम पे लगाना पड़ेगा, यानी कुछ चीज़ें याद करवानी पड़ेंगी। ओके, सो एक हम एशियन लोग जो हैं, हम अपने खाने पीने को लेकर ना बड़े ही पर्टिकुलर हैं, ठीक है, उसके साथ में पर्टिकुलर है जब हम अपने डब्बों में किसी को भर के वो डब्बा देते हैं, अनटिल अनलेस वो डिस्पोजेबल है और उसमें हमारी जान अटकी ना हो। तो व्हेन इट कम्स टू डब्बा, डू यू रिमाइंड, जिनको भी डब्बे में आपने भर के बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, तो डू यू रिमाइंड देम? सो विथ मी आई बाबा, व्हेन माय एल्डर वन वाज गोइंग टू यूनिवर्सिटी, तो मैं हमेशा बोलती थी कि वीकेंड आने आते समय मेरे जो डिब्बे मैंने तुझे भर के दी थी सब्जियाँ, प्लीज़ मेरे 4-5 डिब्बे वापस लेके आना। दिस इज़ द एशियन मम इन मी। ओके, आपके यहाँ पे भी डब्बों के लेके कोई भी स्टोरी है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, अलॉन्ग विद दिस, घर के डब्बे ये तो चलो ठीक ही है, ठीक है, वो होता ना जब पार्सल आते हैं और उसमें ना कुछ कुछ डिब्बे ना, ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें आप जो लेते हो भाई, अय वो डब्बों की पैकिंग इतनी सुंदर होती है, मेरी तो आधी जान उन डब्बों में कभी कभी बस जाती है। जोक सपाट पर, जोक सपाट क्या, जोक पे ही तो आज बात चल रही है, इसी पे तो बात चल रही है, डब्बों में आपकी जान रहती है क्या, हाँ या ना, मुझे जल्दी जल्दी बताओ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126 Indian rupees 75 paise. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: United States and Bosnia के बीच में फुल टाइम हो चुका है एंड US ने ये गेम जीता है क्योंकि उन्होंने दागे हैं 2 गोल और बोस्निया ने कोई भी गोल नहीं दागा. स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच गेम शुरू होगा 8 बजे. एंड डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like a gold.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 24 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. हर रोज इसी समय पे आप और हम मिलके बात करते हैं किसी ना किसी लाइफ थियोरी पे. तो आज हम बात करने वाले हैं द बलून एक्सपेरिमेंट थियोरी के बारे में. ओके, एक्सपेरिमेंट भी है थियोरी भी है. तो बात है एक क्लासरूम की एंड ये एक कॉलेज का क्लासरूम है, यूनिवर्सिटी का क्लासरूम है, जहाँ पे प्रोफेसर ने लोगों को बहुत सारे बलून बांट दिए, कहा बलून फुलाओ और हर बलून पे अपना अपना नाम लिख दो. एंड बाद में ये सारे बलून जो हैं, जो पैसेज था, जो कॉरिडोर था क्लासरूम के बाहर, वहाँ पे सारे बलून उनसे लेके वो फेंक दिए और फिर उन सबको कहा कि भाई जल्दी से जाओ, मैं 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, अपने अपने बलून ढूंढ के लाओ. सब लोग ढूंढने लगे, उनके नाम का बलून उन्हें मिला ही नहीं. अब इन्होंने प्रोफेसर ने देखा 1 मिनट का, उन्होंने 2 मिनट कर दिया, 3 मिनट कर दिया, फिर भी किसी को अपने नाम का बलून जल्दी नहीं मिल रहा था. उन्होंने कहा ओके स्टॉप, चलिए फिर से नया गेम खेलते हैं. उन्होंने कहा कि अब जिस बलून पे जिस इंसान का नाम लिखा है वो बलून उठाओ, तुम्हारे हाथ में जो भी बलून आ रहा है उस पर जो भी नाम लिखा है जाके उस इंसान को वो बलून दो. और जैसे उन्होंने टाइमर ऑन किया, फटाफट विद इन 2 मिनट्स जितने बच्चे थे वहाँ पे, 30-40 बच्चे, उन सब ने अपने अपने बलून जो है उनके हाथ में आए और जिसका नाम उस बलून पे लिखा था जाके उन्हें दे दिया. सब खुश, प्रोफेसर खुश. अब ये बलून एक्सपेरिमेंट थियोरी है क्या? देखिए जिंदगी में हम सभी सफल होना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इस पूरी भाग दौड़ में हम जब अपने चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं ना तो वो जल्दी हाथ में नहीं आती. ऐसा नहीं कि मिलेंगी नहीं, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन जल्दी आपके हाथ में नहीं आती. अब इस प्रोसेस के दरमियान जब आप दूसरों की भी मदद करते चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में भी वो लोग आ जाते हैं जो आपको मदद करते हैं एंड कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में उनका हाथ होता है. भाई हमेशा कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी का जो टारगेट है ना, वहाँ पहुँचने के लिए केवल 3 लोगों से आपके कनेक्शंस होने चाहिए. वो 3 लोग आपके टारगेट के बहुत करीब होते हैं, कहीं ना कहीं से वो आपको आपके टारगेट तक पहुँचा सकते हैं. लेकिन ये सब चीज़ें आप कैसे अचीव कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपके अच्छे कर्मा, अपने गोल्स टारगेट्स की तरफ कॉन्सेंट्रेशन रखिए, उसे अचीव करिए. लेकिन उस दरमियान जो लोग आपको मिल रहे हैं उनकी भी हेल्प करते चलिए, न जाने उनमें से कोई एक आपका हाथ पकड़ के आपके टारगेट तक आपको पहुंचा दे. कैसी लगी द बलून एक्सपेरिमेंट थ्योरी, बताइएगा जरूर.
2: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: ZTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम।
4: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
5: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
6: Latuke halo ne nandala.
5: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
7: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
8: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
7: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
8: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
7: Visit Kajal's Couture.
9: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
10: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
11: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
9: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
10: Thanks, playtime's over. Lovely.
12: Feel the fun. Play Ojo.
13: 18 plus, gamble aware.
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
15: सुनो ए भाई और बहनो, अरे मदगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ दोंडीबा आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: अच्छा ये राफ्ता राफ्ता गीत में देखो, ये जो इंसान थे, ये जो मनुष्य हैं, है ना, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली नहीं. मुझे प्यार सिखाया किसने? इसने. ये क्या किया? इसने. ये कैसे हुआ? इसने. हर चीज़ के लिए ब्लेम उस पे. कितना प्यारा कॉम्प्लीमेंट था, मुझे प्यार सिखाया किसने. आई एम श्योर आप सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको प्यार सिखाता होगा. जी हाँ, हम ह्यूमंस एक्चुअली वी आर सो प्यारे ना, लेकिन हम ना जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे थोड़े पोल्यूटेड होते जाते हैं अपने थॉट्स में. बच्चों को देखो कितना इनोसेंटली, नो फिकर, उनको कुछ मतलब इनोसेंस की ये लेवल होती है कि कहीं पे कुछ भी कर देंगे, लेकिन नो शर्मो है या नो फिकर कि लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे. और वहीं हम बड़े, कितने सोसाइटी के रूल्स, लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे, ऑल दिस थिंग्स. लेकिन अब प्यार जो है इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, और जब प्यार में आप होते हैं तो फिर दुनिया क्या कहेगी, क्या बोलेगी, क्या करेगी, किसी का कुछ ध्यान नहीं रहता. Somehow I just love the energy of this track, Rafta Rafta. Kishore Kumar की आवाज़ में कहानी किस्मत की, इस फिल्म से सुनाया था ये गीत. एंड अरे मैंने ऐसे तो नहीं कहा था, ये जो कहा था ये आशा जी ने कहा था जहाँ तक मुझे याद है. ओके, एंड आप सबको बता दें भाई कि लेजेंडरी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हरिहरन इज लाइव एट लाइका हेडक्वार्टर्स ऑन फ्राइडे एट 11:30 AM. सो बिल्कुल सुनिएगा, उनसे रिलेटेड बातचीत भी यहाँ पे होगी, उसके बारे में डिटेल्स आपको फ्राइडे पता चल ही जाएगी. एंड मैंने आप सबसे पूछा है कि भाई डब्बों के बारे में क्या, मतलब आपके घर का सीन क्या है, तो कहानी घर करके बहुत सारे लोग मेरी ही कैटेगरी में हैं जो अपने बच्चों को याद दिलवाते हैं जब वो यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं कि भाई हमारे डब्बे कहाँ हैं, लाओ. एंड कई लोग वही बता रहे हैं कि भाई परफ्यूम के डब्बे बड़े अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के डब्बे बड़े अच्छे होते हैं, पर वो जो बड़े बड़े बक्से आते हैं ना, उनको डिस्पोज ऑफ करना ना, वो ज़रा एक दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है. लेकिन देर आर वेरी क्यूट क्यूट डब्बाज, आई मस्ट से कि मज़ा आ जाता है यार, कि जब कोई ये लोग स्ट्रक्चर बनाते होंगे किसी चीज़ के लिए कि भाई हमें ये डिज़ाइन ऐसे करना है, ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, किस डब्बे में पैक होगा, इसको लेके भी कितना इनका डिस्कशन होता होगा ना कि ये डब्बा इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, ऐसे कलर स्कीम लेंगे. इंटरेस्टिंग राइट. चलते हैं यादों की बारात की तरफ. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर.
0: ये है लाइका गोल्ड, द इवनिंग शो विद अश्विनी.

नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
1: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
0: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
1: Let's just say I found my flow.
0: Always discreet. Live with no compromise.
2: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com
4: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड
4: विजिट TravelHubWorld.com
5: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
4: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
6: Great news, Tariqalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariqalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane Pinner, HA5F5EJ. Quality, value and freshness only at Tariqalal Raiders Lane.
7: Two businesses.
8: Same town.
7: Same service.
8: One appears on page one of Google.
7: The other doesn't.
8: Guess which one gets the customer?
7: The truth is brutal.
8: The first page of Google gets the business.
7: Everyone else gets what's left.
8: So here's the real question.
7: When your customers search for what you sell, do they find you?
8: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई फ्रॉम ब्रेथ टेकिंग वेडिंग ज्वेलरी टू द फाइनेस्ट डायमंड रिंग्स डू कम इन एंड सी अस एट Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime. On Leica Gold.
10: Yeah, Leica Gold.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
11: For £1, you'll get 127.46 Indian rupee, 371.23 Pakistani rupee, 447.99 Sri Lankan rupee, 164.49 Bangladeshi taka, 85.23 Afghan Afghani, 172.59 Kenyan shilling, 1.33 US dollars.
12: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
12: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
11: Gold is currently trading at £99.36 per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
11: मिलाने की घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है इट्स 51 मिनट्स पास 7 आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन

0: लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। आप सभी ने पूछा कि भाई मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि आज आपने क्या इंटरेस्टिंग किया, तो मैंने क्या इंटरेस्टिंग किया, अनदर सेल्फ नाम की एक टर्किश वेब सीरीज है, उसका सीजन 3 आया, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वेब सीरीज। इसमें हीलिंग के बारे में, ट्रॉमास के बारे में, ब्लॉक्स के बारे में बहुत बात हुई, जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है मेरे लिए। ये देखते देखते आज मैं बहुत रोई भी हूँ, बहुत खुश भी हुई हूँ। दिस वॉज माई प्रोडक्टिव डे टूडे।
1: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
2: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
3: जय श्री स्वामी नारायण। सेफ्टी डेट संडे 19 जुलाई 2026 एनुअल रथ यात्रा के लिए भक्तों को मिलेगा पवित्र अवसर भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ को हैरो और ब्रेंट की स्ट्रीट्स पर खींचने का। यात्रा शुरू होगी SKSS टेम्पल कैंटन हैरो से और पूर्ण होगी श्री स्वामी नारायण टेम्पल स्टैनमोर पर। ज्यादा जानकारी के लिए दोनों टेम्पल्स के सोशल मीडिया और वेबसाइट SKSST.org और stanmoretemple.com विजिट करें। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो। जय श्री स्वामी नारायण।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
7: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
6: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
7: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
6: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
8: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
9: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
11: Southall Travel, Atoll protected.
12: Sonatours.co.uk, 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
13: The Evening Show with Ashwini.

0: London, SBI UK, Manchester. Send money to India with Radio Network with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your 1 pound British sterling could get you up to 126 Indian rupees and 75 paise. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तो बहुत ही बेहतरीन गीतों के साथ में सेकेंड आवर का हमने आगाज किया। जरा सा झूम लूं मैं, 90s वाले बच्चे तो खुश होंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म से सुनाया था ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, ओए होए, कर्ज फिल्म से एक हसीना थी। सो जब वादा करते हैं किसी से, कहते ना वो वादा निभाना चाहिए। मैंने आप सबसे वादा किया था, कल आप सबसे पूछा था कि क्या मेरी लिखी हुई कोई हिंदी पोएम आप सुनना चाहेंगे, तो आप सबने कहा था बिल्कुल सुनना चाहेंगे। तो चलिए आप सबके लिए ये एक पोएम मैं लेके आई हूँ। इस पोएम का नाम, इस कविता का नाम है ख्वाब। ख्वाब यानी ड्रीम। हम सबके ड्रीम होते हैं ना लाइफ में, तो कभी कभी याद दिलाना पड़ता है कि वो ड्रीम कहाँ है भाई, दुनियादारी में गुम हो गए। तो अपने आप को याद दिलाने के लिए ये मैंने लिखी थी ख्वाब। चल अब चले, चल अब चले, भागे दौड़े उन ख्वाबों से मिले, जिन्हें सोचा देखा मन में पनपा था कभी, उन ख्वाबों की उड़ान ले। चल अब चले, भागे दौड़े उन ख्वाबों से मिले, अपनी मंजिल की राह देखी थी जब, तब ना मिली ये सोचकर ना रुके ना ठहरे। चल अब चले, भागे दौड़े उन ख्वाबों से मिले, अपने आप से वादा किया था कभी। आई एम श्योर हम सभी जब बच्चे होते हैं ना, तो हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, हम खुद को बोलते हैं देखना मैं बड़े होके ना ऐसी बनूंगी या ये बनूंगा। किया था ना वादा, अपने आप से वादा किया था कभी। उस वादे को ना भूले ना बिसरे, उस वादे को निभाए। चल अब चले, भागे दौड़े उन ख्वाबों से मिले, कठिनाइयाँ आएंगी कहीं, अरे वो तो आएंगी बाबा, कठिनाइयाँ आएंगी कहीं, उन कठिनाइयों से ना भागे ना डरे, अरे यार उनसे डट कर सामना करे, वो सुलझेंगी सुलझ ही जाएंगी, देख तू हौसला ना कम कर। चल अब भागे दौड़े उन ख्वाबों से मिले, आपके भी ख्वाब हो ना, नेवर गिव अप इन योर ड्रीम्स। और ये कविता अगर कहीं ना कहीं, ये पोएम अगर दिल को छू गई है, फिर से याद दिला दिया अपने ख्वाबों के बारे में, तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये पोएम। नेक्स्ट ट्रैक किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सबके लिए,
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: भाई यूएस और बोस्निया के बीच में गेम हुआ जिसे जीता यूएस ने, क्योंकि उन्होंने दागे 2 गोल और बोस्निया ने 0 गोल्स बनाए। स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच गेम शुरू हो चुका है, 20 मिनट्स हो गए लेकिन दोनों में से किसी ने भी अब तक कोई भी गोल नहीं दागा। डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
4: Lattuke halo ne nandala.
3: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Meetha khara, khara. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
5: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410, दैट्स 8574 8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
8: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
9: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
8: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
10: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
0: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 32 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. भाई बता दें आपको कि लेजेंडरी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हरिहरन लाइव आने वाले हैं हमारे लाइका हेडक्वार्टर्स ऑन फ्राइडे एट 11:30. तो उन्हें आप लाइव ज़रूर सुन सकेंगे. तो आज मैं अपनी बेस्टी से बात कर रही थी और हम लोग दोनों बात कर रहे थे अबाउट कि कैसे लोग ब्रांडेड चीज़ों के पीछे दीवाने होते हैं, है ना. अब उसके पीछे हम दोनों की डिस्कशन ये भी चल रही थी कि मतलब ब्रांड्स क्या क्या बेसिकली होता है कि लोग ब्रांडेड चीज़ों के पीछे इतने दीवाने होते हैं. तो उसके पीछे देर आर रीजंस, यू नो, दे इट्स टू सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल सोशल फंक्शनल नीड्स दैट अनब्रांडेड अल्टरनेटिव्स कैन नॉट मीट. अब होता यह है कि कंसिस्टेंसी आती, जो भी ब्रांडेड चीज़ आप लेते हैं आपको ये तो पक्का पता है कि भाई अभी ये जो लोगो है इस ब्रांडेड चीज़ का, ये प्रेडिक्टेबिलिटी देता है कि क्वालिटी है. फिर आपकी एंजाइटी कम होती है कि मैंने इतने पैसे डाले हैं तो ये चीज़ अच्छी निकलेगी या नहीं. नहीं, नहीं निकलेगी, बिकॉज आपको पता है कि ये ब्रांड जो है ये इस लेवल का काम करता है जहाँ पे आपकी एंजाइटी ट्रिगर ना हो. बायर्स ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड नेम्स टू प्रोटेक्ट देयर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थ्रू फंक्शनल रिलायबिलिटी. आपका टाइम भी सेव होता है. आपको ये भी ज़रूर पता है कि भाई अब मुझे बहुत ज़्यादा नामजाम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा R&D नहीं करनी है. दिस ब्रांड वर्क्स फॉर मी, आई विल गो फॉर दिस, है ना. कहीं ना कहीं सोशल वैलिडेशन होता है. जी जी जी, स्टेटस एंड सोशल आइडेंटिटी का प्रतीक भी होता है ब्रांड. एंड पीयर एक्सेप्टेंस होता है, ट्राइबल बिलोंगिंग होती है. कहीं ना कहीं हम सभी बिलोंगिंग को बहुत ढूंढते रहते हैं, है ना, कि भाई मैं इस जगह बिलोंग करता हूँ या करती हूँ. वेल, हम दोनों बात कर रहे थे और पता नहीं क्यों हो जाता है, अब हम प्रेजेंटर्स को बातें करने की आदत होती है और हम जो आदत होती है ना वो हमारी पर्सनालिटी के द्वारा भी हम रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, बातों के द्वारा भी रिफ्लेक्ट करते हैं. तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि भाई एक तो आप ब्रांडेड चीज़ें पहन लो या खुद ब्रांड बन जाओ. तो उसने कहा वाह वाह वाह वाह. बट आई फर्मली बिलीव दिस. जोक्स अपार्ट एंड ऑन सीरियस नोट्स, हम अपने आप पे इतनी मेहनत कर लें, इतनी मेहनत करो भाई सब लोग अपने ऊपर कि आप अपने आप में एक ब्रांड बन जाओ एंड लोग कहें कि यार इनके जैसा कोई हो. क्या लगता है? नेक्स्ट ट्रैक इमोशन ऑफ द डे में, इट्स अ थ्रिलिंग थर्सडे. बहुत प्यारा गीत शक्ति फिल्म से आप सबके लिए, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में, जाने कैसे कब. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स.
0: Like a gold.
3: Like a gold.
0: Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show.
3: Like a gold.
0: Emotion of the day.

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
4: Women's cricket updates के लिए आपको ले चलते हैं कमल प्रभाकर जी, जो हैं हमारे क्रिकेट संवाददाता। कमल जी, कैसे हैं आप?
5: अश्विनी जी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो?
4: बहुत बढ़िया। अभी हम दोनों हंस रहे थे किसी बात पे। जी, क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं।
5: तो अश्विनी जी, इट इज अ फुल हाउस इन ओवल।
4: जी
5: नहीं, ऑनेस्ट टू गॉड फुल हाउस है और 90% इंग्लैंड के सपोर्टर है सब। और जो गेम चल रही अभी, तो इंग्लैंड हैड अ बिट ऑफ अ कलैप्स जब स्टार्ट किया, बट देन इट गॉट देम बैक इन द गेम। दे सॉर्ट ऑफ बैटेड वेल, वो लोग ने बैटिंग अच्छा किया, एंड देन क्या हुआ कि बॉलिंग यू नो प्रेशर ऑन साउथ अफ्रीका, एंड एज साउथ अफ्रीका फिर स्टार्टेड यू नो फील्डिंग वेल एंड बॉलिंग वेल, बट इन द एंड यू नो ना यू नो दे इंग्लैंड डिड प्रीटी वेल, बट नाउ दे नीड 121 साउथ अफ्रीका को टू विन। At the moment, they are chasing pretty well, but it will take some good batting, good partnerships, and you know, partnership wins you matches. So it will now, you know, it's going to be, you know, it's even at the moment. So inko 127 ke liye win ke liye chahiye South Africa, and they have they are batting well. But let's see what happens. 43-1 at the moment.
4: जी ठीक है, looking forward to all the updates and please अपना ख्याल रखिए, कल फिर से आपसे बात होगी।
5: Thank you so so much. और this जो भी इसे जीतेगा तो prize उनके लिए final में।
4: बिल्कुल जी, take care.
5: Okay, thank you जी Ashwini.
4: Thank you Kamal जी.
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
6: Like a gold. Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
4: भाई पॉडकास्ट एपिसोड 23 आ चुका है, आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। राइज इन वुमेन्स क्रिकेट होस्टेड बाय दीप राजा। एपिसोड शेड्स अ लाइट ऑन हाउ फार वी हैव कम एज अ सोसाइटी व्हाइल आल्सो क्वेश्चनिंग हाउ फार वी स्टिल नीड टू गो। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर।
4: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:44 PM. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। 2nd of July थर्सडे, कल होगा फ्राइडे। तो फ्राइडे आप सभी समझ चुके हैं कि फ्राइडे नॉर्मल तो होता नहीं है हम लोगों के लिए, है ना। फैंटास्टिक फ्राइडे, खा पी के बैठिएगा, कैलरीज बर्न करनी है क्योंकि डांस, मस्ती, मजा, गपशप, इंटरेक्शन होने वाला है। आज का रैंडम सवाल तो मैंने पूछ लिया डब्बों के बारे में। अभी भी लोग अपने डब्बों की कहानियाँ शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके आस पड़ोस वालों को भी उनको बोलना पड़ता है कि हमारे डिब्बे आपके पास में हैं। एक्चुअली आई सॉ अ रील, फनी रील, जिसमें दैट फीमेल सेज, अरे कमलेश की बहू, तेरे जेठ जी का डब्बा दे दे, जब तू दिल्ली के अलाफना चौक में रहती थी तब मैंने डब्बा बना के दिया था, वो डब्बा तेरे जेठ जी को लगता है लेके आना। एंड आई वॉज लाइक वॉट इज़ दिस रील, बट द क्रिएटिविटी जो है अब उस पर इतनी सारी और रील्स बन गई। एंड आई वॉज लाइक यार दिस इज सच अ फैंटास्टिक टॉपिक टू कवर ऑन माई शो, है ना। All those dabba kahani.
2: This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. Like a gold.
6: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
0: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड
0: विजिट travelhubworld.com
7: हेलो के छो हूँ छु के छी दवे आना आ शू चाहिए अरे अरे पब्लिक डिमांड हरीती आ रही छु लंडन मारो नव नाटक लेने बस मी प्रीमियर लीग એટલે કે PPL यस फ्रॉम 3rd जुलाई टिल 12th ऑफ जुलाई वाओ एंड दिस इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय पंकज सोडा गैलेक्सी शोज याद रखो
8: पत्नी प्रीमियर लीग शोज एट राइसली अल्बर्टन ईस्ट एंड साउथ लंदन लोर होम लेस्टर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756194
9: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
10: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज

0: 0825 or visit meraboiler.com. T's and C's apply. Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208 951 0111.
1: Carotino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This week's Leica Extra podcast episode, Deep Raja talks about the rise in women's cricket.
3: Have we done enough for women? What, if not, what do we do?
4: Right, it's never enough, but there's a lot of work being done. There's so many programs now. So give some credit to the counties and the countries where they've got coaches, they've got scouts.
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.
5: Ye hai.
6: Leica Gold.
5: Leica Gold.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
7: For £1, you'll get 127.38 Indian rupee, 371.07 Pakistani rupee, 447.79 Sri Lankan rupee, 164.32 Bangladeshi taka, 85.33 Afghan Afghani, 172.59 Kenyan shilling, and 1.33 US dollars.
6: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan, or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
7: Gold is currently trading at £99.14 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
7: जी हाँ, टिक टिक टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है कि इस आवर का आखिरी गीत सुनाएंगी आप? बिल्कुल सुनाएंगे भाई, इसी के लिए तो आए हैं यहाँ पे हम. आते क्यों हैं यहाँ पे, आके बैठते क्यों हैं? क्योंकि स्टोरीज, गपशप, इंटरेक्शन, मेलोडियस गीत. सो इस आवर का आखिरी गीत आप सबके लिए डेडिकेटेड है मेरी तरफ से, बैराग फिल्म से. सारे शहर में आप सा कोई नहीं, तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अराउंड द ग्लोब, आप मुझे जहाँ पे भी सुन रहे ना, मेरी तरफ से, यू डोंट इवन नो आप लोग कितने स्पेशल हो. आप लोग अपने आप में सेलिब्रिटीज़ हो भाई, स्टार्स हो, यू नो. तो बिल्कुल ये गीत अपने आप के लिए. ये एक काम करो, अच्छा, ये जब ये गीत शुरू हो जाए ना, प्लीज़ आप आईने के सामने जाके खड़े रहो. एंड देन अश्विनी ने ये गीत हमारे लिए प्ले किया है, लाइका गोल्ड रेडियो ने ये हमारे लिए प्ले किया है, लाइका रेडियो ने हमारे लिए प्ले किया, ऐसा बोलो. खुश रहो, खुश रहना चाहिए. सबने पूछा आपका दिन कैसा था, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने वो जो वेब सीरीज़ देखी अनदर सेल्फ, प्लीज़ देखिए अगर आप हीलिंग में बिलीव करते हैं. और मुझे ना फर्मली लगता है कि हम सभी के ब्लॉक्स हैं, हम सभी किसी ना किसी ऐसी जर्नी से गए हैं जहाँ पे दुख, दर्द, पीड़ा हमारे अंदर होती हैं, एंड उसे ना हील करना चाहिए. कई बार ना हम उसी चीज़ को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं और इतने दुखी रहते हैं कि टिला लास्ट ब्रेथ वो दुख दर्द रहता है हमारे. तो प्लीज़ वो सीरीज़ देखिए अगर आप देख सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में है, बहुत सुंदर सीरीज़ है, देखिएगा ज़रूर. एंड अब चलते हैं आखिरी गीत की तरफ. दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी.
2: To you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
6: Leica Gold.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
9: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Travel Mantra.
10: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays.

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 9:14, इट्स 9:14। आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे तक रहता है आपका और मेरा साथ, शाम 7 बजे से लेके 10 बजे तक। आखिरी आवर है तो कवाली या गजल, बताइए मैं क्या सुनाने वाली। इस आवर का आगाज हमने किया था बेटा फिल्म से, कोयल से तेरी बोली अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। एंड सेकंड ट्रैक जो हमने लिया था आशाओं के, दैट वाज आशा फिल्म से विच वाज रिलीज्ड इन 1980, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126 Indian rupees and 75 paise. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: भाई आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस और सारे गीतों को जो आपने पसंद किया उसकी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, क्या बात है जज साहब, खुश हो गई मैं। ओके, तो आखिरी गीत आप सबके लिए डेडिकेट किया था सारे शहर में आप सा कोई नहीं, एंड आई जेन्युइनली मीन इट, बिकॉज आप लोग सभी जो हैं अपने ब्रेन को, अपने आप को एंगेज कर रहे हैं म्यूज़िक के द्वारा, एंड म्यूज़िक इज़ द बेस्ट थेरेपी। क्योंकि अगर आप म्यूज़िक नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को ना बहुत ज़्यादा एंगेज रख रहे हैं, बिजी रख रहे हैं ऐसी थॉट्स में जो शायद आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं करती है। आप लोग जानते हैं ना कि एक तो 70% वही रिपीटेड थॉट्स हमारे सिर में होते हैं, उसमें से 50-60% जो हैं वो आपकी नेगेटिव थॉट्स होती हैं, ठीक है। और कुल मिला के 70,000 थॉट्स हमें दिन में से आते हैं। आप सोच लो, हिसाब लगा लो कि कितनी थॉट्स ऐसी हैं जिसे आप सोच कर मुस्कुराते हो, है ना। एंड जब आप लोगों ने कहा कि भाई आपका दिन कैसा रहा, तो मैंने आज सुबह उठते से ना, एवरी डे यू हैव टू टेल दिस टू योर सेल्फ कि टुडे आई विल बी काइंड, ओके, चाहे कोई मुझसे कैसा भी बिहेव करे, आई विल बी काइंड। टुडे आई विल बी इन माय हैप्पीएस्ट मूड। होता है, फैक्टर्स होते हैं कि जब आप हिल जाते हैं, डुल जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को ये कहते रहें, और कहा जाता है ना ये सब चीज़ की फेक इट टिल यू मेक इट, तो ये चीज़ आप अपने आप को बोलते चलिए एंड देखिए उसका असर होगा कि आज मेरा दिन अच्छा है, आज मैं खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ, ये बोलते चलिए और देखिए। कल ये सुबह से फॉर्मूला करिए, सुबह उठते से ही ना, एक तो अपने आप को आई लव यू कहना ही है, ये तो प्रिस्क्रिप्शन है मेरी तरफ से आप सबको, उठते से आईने में देखिए अपने आप को, आई लव यू कहिए और ये कहिए कि आज मैं बेहद खुश हूँ, कुछ भी हो जाए, ठीक है। देखिए कुछ भी हो जाए मतलब ऑब्वियसली यार, समझ लेना मैं क्या कह रही हूँ। नेक्स्ट ट्रैक लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ में, कभी कभी फिल्म से, कौन सा गीत है, तेरा फूलों जैसा रंग।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड।

0: Score Update, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच में अभी गेम चल रहा है, 62 मिनट्स हो गए हैं. स्पेन ने दागा है 1 गोल, ऑस्ट्रिया अभी भी 0 पे. एंड डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
0: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स. कॉल 0203 345 2000 और विजिट raklaw.co.uk.
1: जैसे जैसे ये घड़ी आगे बढ़ते जाती है और कहती है कि देख तो लो टाइम एक बार कितना हो रखा है. इट्स 25, नियरली 25 हो रहे हैं अभी. इट्स नियरली 25 मिनट्स पास्ट 9, 9:25 हो गए. देखो हो गए, वो 2-3 सेकेंड बचते ना तब मैं ऐसे लंबे लंबे ऐवे ही अपने सेंटेंसेस खींचते रहती हूँ. पता नहीं, मुझे राउंड फिगर्स हो जाए ना तो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं. या इट हैपन्स. सो इस आवर के हाफ द वे हम पहुँच गए हैं. एंड गज़ल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, आप लोग अभी भी मुझे इसका अंदाज भेज रहे हैं लिख लिख के कि मैं आज आपको क्या सुना सकती हूँ. आर्टिस्ट ऑफ द वीक में आप सभी को शमशाद बेगम के गीत हम इस पूरे सप्ताह सुना रहे हैं. बिल्कुल आप लोगों को विंटेज वाली फीलिंग आती है. जी हाँ, आप लोगों में से कई लोगों ने कल मुझे मैसेज किया था, कहा था अरे ये तो पूरी विंटेज की फीलिंग आ गई भी अश्विनी. बिल्कुल होता है कि जब हमारे कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 40s और 50s के एरा में उस समय जो उन्होंने अपनी आर्ट प्रेजेंट की थी, अपने गीत प्रेजेंट किए थे, तो जब वहाँ पे जाके गीत सुनते हैं तो एक तो मुझे उत्सुकता भी होती है कि उस ज़माने में जब लोगों ने अपने आप को एज कलाकार लोगों के सामने लाया होगा तो किस तरीके का रिस्पॉन्स होगा. बिकॉज देखिए ना, सोशल मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया कितना था, टेलीविज़न तो था ही नहीं, तो लोगों तक अपनी कला को पहुँचाने का माध्यम उनका क्या रहा होगा, है ना. ओके, तो चलिए अब बात करते हैं ज़रा. आज 2nd of July किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होती होगी, और आज किसी को नई जॉब लगी होगी और कुछ नए जॉब की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे होंगे. ठीक है, जैसा भी आपका दिन रहा, तो आज के दिन और भी कुछ चीज़ें मनाई जाती हैं. मेड इन द USA डे मनाया जाता है, पैलियो हॉर्स रेस इन सियाना मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूटर्स डे मनाया जाता है, नेशनल एनिसर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड UFO डो क्या डे होता है भाई, स्पेशल रिक्रिएशन फॉर द डिसेबल्ड डे, नेशनल वाइल्ड लैंड फायर फाइटर डे, थर्स्टी थर्सडे, एंड ये बड़ा कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगा, दैट इज नेशनल आई फॉरगेट डे. ओके, मतलब जो लोग भूल जाते ना गजनी, ओके, उनके लिए आज का दिन डेडिकेटेड है. तो मेनी अ टाइम्स यू मस्ट हैव फॉरगॉटन अ फ्रेंड्स बर्थडे और एनिवर्सरी, एंड इफ दिस साउंड्स फैमिलियर तो कहना आज का दिन मेरा दिन है. ओके, भूलने वालों का दिन होता है. आई फॉरगेट डे इज हियर फॉर यू. दिस डे इज अ लाइट हार्टेड एक्नॉलेजमेंट of our occasional slips and provides a perfect opportunity to make amends whether it's missed appointments or overlooked special dates. I forgot. Hey Bhagwan, ये ना एक तो मैं thanks to social media कहती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के स्टेटस पे जब लोग अपने अपने बर्थडेज के बारे में कुछ फोटोज़ या मैसेज डाल देते हैं तो यू गेट सेव्ड. दूसरा, ये जो सोशल मीडिया के दूसरे, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे जो भी है, वहाँ पे जब लोग उनके बर्थडे के बारे में कुछ दिख जाता और फट से आप फिश कर देते हो, वहाँ पे आप बच जाते हो. मतलब आई एम सो थैंकफुल टू सोशल मीडिया ना. सोशल मीडिया आप कैसे यूज़ करते हो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेड है. सो एनीवे, आपकी लाइफ में जो भी गजनी है, जो भूल जाते हैं, उनको कहना आज हैप्पी आई फॉरगॉट डे है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको विश किया जाए.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
4: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
5: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
4: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
5: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
4: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
5: Visit Kajal's Couture.
4: This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots, learn coding. Use code LAIKA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA or call 07533065549.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
0: Like a Goon, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे। Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: भैया आप सभी को बता दें कि लेजेंडरी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हरिहरन आ रहे हैं लाइव एट लाइका हेडक्वार्टर्स ऑन फ्राइडे मॉर्निंग 11:30। तो बिल्कुल उनका इंटरव्यू होगा, उनके बारे में क्लिप्स और काफ़ी कुछ आपको देखने ज़रूर मिलेगा। तो ज़रूर हमारे सोशल मीडिया पे भी ज़रा आँख रखिए और आप हमारे शोज़ को तो सुनते ही रहते हैं। नेक्स्ट ट्रैक आपको सुना रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म से।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल. Every weekend 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. Saturday and Sunday मेरे साथ ही रहेंगे.
0: This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट travelhubworld.com.
4: Search is changing.
5: Customers aren't just using Google anymore.
4: They're asking AI.
5: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
4: One business, one recommendation.
5: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
4: Will your business be the answer?
5: Or the one that got left behind?
4: The future of search has already started.
5: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
4: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
7: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TWPays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड. विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 0203129-9840. TWPays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत.
8: योर कॉल इज इम्पोर्टेंट टू अस. यू आर करंटली नंबर 25 इन द क्यू.
9: 25? सीरियसली?
8: Sounds like Ojo time.
9: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
8: Sorry about the wait. How can I help?
9: You can help me celebrate. I won.
10: Feel the fun. Play Ojo.
11: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gambler aware. T's and C's apply.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Feel good hits. In Currency the sun. With Leica Gold. Mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
12: For £1, you'll get 127.41 Indian rupee, 371.11 Pakistani rupee, 447.9 Sri Lankan rupee, 164.31 Bangladeshi taka, 85.53 Afghan Afghani, 172.64 Kenyan shilling, 1.33 US dollars.
10: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
10: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
12: Gold is currently trading at £99.35 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
12: टिक-टिक करते खड़ी कह रही है कि बता दो बड़ा फटाफट टाइम क्या हुआ है. तो इट्स 46 मिनट्स पास 9. आप सभी ने ट्यूनिंग किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. तो कव्वाली या गज़ल में क्या सुनाने वाली जी, कव्वाली आ रही है एंड द बर्निंग ट्रेन से सुना रही हूँ आपको ये कव्वाली. बहुत ही फैंटास्टिक कव्वाली है, आप सभी इसे इंजॉय करेंगे. एंड साथ ही बता दो गोल्ड नाइट सर्विस, हमारी ओवरनाइट सर्विस ज़रूर सुनिएगा. लाइका गोल्ड 2 जो हमारा रेडियो सुनिएगा, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो 90s. साथ में सुबह आएगी हमारी सुरीली काजल, उसका साथ दीजिएगा. हमेशा की तरह इतना ही कहूँगी कि भाई प्यार जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्यार दो, प्यार लो. ज़िंदगी खूबसूरत है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ. पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए ना. आई एम श्योर आप में से कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करता है. ऑन दैट नोट आई हैव टू से कल खा पी के तैयार रहिएगा, क्योंकि फैंटास्टिक फ्राइडे पे आरजे अश्विनी बन जाती है डीजे अश्विनी, और हम खा पी के जो है अपनी सारी की सारी कैलरीज बर्न करते हैं. ठीक है, टाइम फॉर मी टू से बाय बाय. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल. कल साथ में मनाएंगे फैंटास्टिक फ्राइडे. बाय.
13: ये है लाइका गोल्ड.
14: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
15: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: जय श्री स्वामीनारायण। सेव द डेट संडे 19 जुलाई 2026। वार्षिक रथ यात्रा माटे भक्तों ने मर्शे भगवान श्री जगन्नाथ जी ना रथ ने हैरो अने ब्रेंट नी स्ट्रीट पर खेंचवानो पवित्र अवसर। यात्रा नी शुरुआत थशे SKSS टेम्पल केंटन हैरो थी अने समापन थशे श्री स्वामीनारायण टेम्पल स्टेनमोर पर। वधु माहिती माटे बन्ने टेम्पल्स ना सोशल मीडिया अने वेबसाइट
2: SKSST.org और stanmorethemple.com विजिट करो।
1: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो। जय श्री स्वामीनारायण।
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
5: Only 2 days to go.
6: Star Express presents Hariharan's Soul India,
5: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
5: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
7: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। दैट्स 02089072444।
0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड।
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
2: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर travel mantra?
3: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
4: Latuke halo ne nandala.
3: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
4: Meetha khara, khara.
3: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 आवर लाइन।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
9: Why fans shout at football matches?
10: Oh, wake up!
9: That's because sound is the most effective

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
1: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
3: Lottoke halo ne nandala.
1: Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
3: Meetha khara, khara.
1: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: चलो जाइए एक नवा सफर पर
7: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अनि दार एस सलाम साथे जिंजा अनि मचिसन फॉल्स।
8: बस पैक करो अनि रिलैक्स थई जाओ
7: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
8: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
7: 01162662481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirenholidays.co.uk पर।
9: सो यू डीकैफ ओट मिल्क एक्स्ट्रा बट नॉट पाइपिंग हॉट 4 पंप्स ऑफ कैरामेल नो शुगर स्मॉल लाटे इन अ लार्ज कप, दैट विल बी 10 मिनट्स।
10: नो वरीज, आई एम हैविंग फन ऑन प्ले ओजो।
11: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
9: Here's your decaf oat milk, extra but not piping hot.
10: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
12: Feel the fun. PlayOjo.
11: 18 plus, gamble aware.
13: Backed for the trip? Gifts? Passport?
14: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
13: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
14: Simzy?
13: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
15: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
16: T's and C's apply.
17: नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे।
1: सोता है, बहुत जागा है ना।
0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे। कौन है जो

0: भोले वाले ललुआ
1: बोले बोले बोले बोले बोले बोले
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
2: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल।

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग जा भग भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विद्या।